ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सब विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे गुण अक्रोर सच्चे सतान सच्चे ससुर सच्चे तेरे सिर सच्चे साला सच्चे पुत्र सच्चे पातशाह नानक सच्चे सच जो मत जमे सो कज कज महला पहला

मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

प्यारे माई बिलवड, ओ माई बिलवड माइंड, रंग रलिया मानो, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज ओ माई माइंड द रियल फन इज इनसाइड सो कम

प्यारे ओ माय बिलव्ड माइंड, नानक सेस गुरु नानक तुठा, गुरु हैज बिकम मर्सीफुल अपॉन यू।

गुरु महाराज दसते हैं कि इंसान सानू समझांदे हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द दे राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राच ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल दा ख्याल ही नहीं, मंजिल दा चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा, तेरी मंजिल किते होर है लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया है। असि इन्हां कीर्तनां नूं जे ते इस तरह सुनांगे कि असि अपने जीवनां नूं कोई इंस्पीरेशन दे के अगां तोरना है तो जो साडा फर्ज बनता है वह असि करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागां दी गल है, नहीं ते साडी आदत नूं महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी नूं सुनानी चाहना थोड़ी जी। साडी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज कीती सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाने का, कई तरह कहण का। गुरु महाराज मनुख के जीवन नू जानते हैं, ये सुन सुना लैंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप कीता रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया फिर चुप कीता रहिंदा है, जीवन दे विच ए एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलन तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं, वही कहते हैं कि जिथे तुसीं रुक गए हो, जिथे तुसीं अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसीं अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चों प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन होंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच विघन पैंदा है।

आप जी ने बाणी नू पढ़दिया जा सुनदिया एक लफ्ज बहुत दफा सुनिया होएगा, निज कर। निज कर बाणी च आंदा है ना। गुरु महाराज कहते हैं जितनी देर तक तू अपने निज घर के विच नहीं चल जाता, जिहड़ा तेरा अपना घर असल घर, उतनी देर तक तू बेघर है। बेशक तेरे पास घर है भी, तां भी एक घर तेरा नहीं, एक घर नहीं। तो गुरु महाराज जी की बाणी का यह जिहड़ा सुनेहा है, यह जिहड़ा मैसेज है, यह जिहड़ी मत है कि इंसान तेरी जिंदगी ने उस दिन पूर्ण तौर पर सुकून और सुख दे विच पहुंचना है जिस दिन तू अपने निज घर दे विच पहुंच गया। कीर्तन सोहले का पाठ असी रोज करते हैं। सोहले की बाणी दे विच असी ये पंक्ति भी रोज पढ़ते हैं। पंक्ति असी रोज पढ़ते हैं, पर असी पंक्ति पढ़ जाने हैं निज घर नूं प्राप्त करन दी ना ते अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होंदी है ते ना ही वो चीज साडे वास्ते कोई खास इशू बनती है कि मैं अपने इस गुरु बाबा जी दे वचन च जो अपने निज घर नूं लभण नूं आख्या जा रहा है उस निज घर नूं भी लभना है। पर असीं पढ़ रोज जाने हैं। यही कारण है कि गुरबाणी सिर्फ एक पढ़न तक रह गई है, जो इसकी असल साइंस है उस वल असी कदम नहीं उठाए, अपनी जिंदगियां नूं उधर तोरिया नहीं। हुण पंक्ति रोजाना जिहड़ी फेमिलियर है, असी पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं

आप अपनी सुर्ख में वापस फिर जोड़िए। गुरु महाराज जी आखते हैं, सुखी ओही हैं जेड़े अपने इस जीवन दे विच निज कर लभ लैण। महाराज जी आखते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। ओ सुखी हन, असी सुख लभते हैं ना सर, असी सब सुख लभते हैं, पर कहिंदे ओही सुखी होणगे जेड़े अपना निज घर लभ लैणगे। जेड़े घर तो ही बाहर हन और सुखी किवें हो सकते, वे घरे किवें सुखी हो सकते। जिनी घर जाता अपना से सुखी है भाई। तो बाणी दे विच थां थां थां थां ते अनेक पंक्तियां ऐसियां आंदियां हन जिन्हां दे विच महाराज जी निज करदा जो कॉन्सेप्ट है, निज करदा जो विचार है, वह सानू सुनाउंदे हन। थोड़ियां पंक्तियां मैं आप जी दे सामने होर अर्ज करां कि निज कर तो उन्हां दा मतलब की है, वट डू दे रियली मीन बाई निज कर।

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफा में बना के रिहा करते सन। गुरु महाराज जी आखदन साडी भी एक गुफा है, असी एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वो सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वो सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वो साडा घर है।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उत्थे हरख अनंत, सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हन सोग घर गुरु नानक को दिया।

परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नूं ओह कर दिता है, वह है निज कर। किते महाराज उसनूं सहज गुफा आखदे हन कि सहज गुफा कर आसन बांधिया, किते आखदे हन हरख अनंत सोग नहीं बीया सो कर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहिंदे हन नानक बद्दा करता हां। असीं भी जदों एक ते हुंदा ना वी बनिया बनाया कर लै लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन के मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है। किथे? जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथों फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो। उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनू मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नू गाओ।

खोना पहला सुचा को सुखी बैठा आए सुखी अंदर खोना खो जाए सुचा है तो बोला मतलब बोल सुना बोल जाए सुखी आए।

कपड़ा मैला हो जाए साबुन ला ले, मन भी मैला हो जाए, ग्रस्ती हो जाए, कई गलतियां हो जाए। तो इस जन्म में या और किसी जन्म में थी, क्योंकि जन्म कर्म की इस मन को मर जाएगी, जन्म कर्म की कौन कौन ही गलती की थी, किसने हो गई, काला हो अस्या नरंकारी पातशाह तनगुर नानक बाबा कहेंगे कोई नहीं। ये कपड़ा मैला हो गया साबुन ना, हकीकत कपड़ा मैला नहीं, इसलिए मैल कर साबुन ना, ये मन मैला हो गया है, असलियत मन मैला नहीं सी। अगर कहने मन तू जोत स्वरूप है अपना मूर्त नहीं पछाने, कुसंगत भी कह गया फिर गलतियां की थी, ओदा रंग मन पे चल, पापों का रंग चल, तो फिर की कर। तो हजरत हनुमान बड़ी सुंदर उदाहरण पातशाह ने दी श्री जब जी साहब जी के पास। श्री जब जी साहब महापुरुषों का कहते हैं जेड़ा सिख प्यार नाल श्री जब जी साहब जी का पाठ करता है वह धन गुरु नानक पातशाह के दर्शन कर सकता। श्री सुखमनी साहब पढ़ वाला पंजे गुरु नानक के दर्शन कर जप जी, ताई तू जीवेगा जे जपेगा की जप जी। हनुमान दिन भरिया हथ पैर तन देहे पानी धोत उतर स्प्रे भूत पली की कपड़ होए दे साबुन लिए ओ तोए परिये मत पापा के संग ओ तो पैर के रहे नाम दर्शन। कहने की मन नहीं लगता एक क्वेश्चन, फिर भी नाम महापुरुषों का सत्संग है भाई। अग न किसी तरह हथ ला दो अग साड़े, अग न जान के हथ लाओ ता भी साड़ेगी, जे गलती नाल हथ लग जाए ता भी साड़ेगी। क्यों अग का सुभा अगन देवता का सुभा निरंकार ने साड़ना भी किसी तरह। मन कागर करके वाहगुरु का जाप करिए यदा तो बड़ा ही महत्व है ना, पर ये सुधे सिद्धी रचना जप रही है श्री वाहिगुरु एदा भी फल एना कि फल अगन किसी तरह खिलाफ साड़ी है, नाम किसी तरह जपो नाम पापा अनुसार दीवा बले अंधेरा जाए। कितनी सुंदर मिसाल, अंधेरे को दूर करना हो और कोई साधन नहीं दीवा जला दे, अंधेरा किधर गया दीवे ने खा ले, दीवे की खुराक अंधेरा, इसी तरह नाम की खुराक ही पाप। दीवा बलि अंधेरा जाए वेद पाठ मत पाप। तो इस वास्ते एक मन होए गुर जाप जपन कुरबानी तिना गुरु सिखा फिर साध संगत चल जाए सत्संग था। जिस तरह तुम ये जरूरी नाम जपना जरूरी है, दान करना जरूरी है, सिखी नाल जुड़ना जरूरी है, उसे सत्संग आके जाना, क्योंकि सत्संग आके मेरे माधव जी सतसंगत मिले। इतने आके सानू गुरमत की रोशनी मिली, गुरमत की पढ़ाई असी पढ़नी है जी ओदा पता। तो भाई साहब जी लिख दी मैं उन्होंने गुरसिखा तू कुरबान जाना साध संगत चल जाए जुड़े कुरबाणी तिना गुरसिखा गुरबाणी नित गाय नित असी नित नहीं। इस करके साडा मन कई बार कमजोर है, रोटी नित ना खाई शरीर कमजोर है। तो गुरबाणी का सुनना ते पढ़ना नित नेम नित कदे भी नागा ना, क्योंकि नित नेम बड़ी रोज आहु जाने वाला नित नेम इंसान ओरी जरूर तरक्की हो, रोज नितनेम नाल दुकान से जाने वाला दुकान जरूर। इसी तरह गुरु दे मिलाप वाली रोज का नितनेम सियाणी भैन बच्ची घर की सफाई

सो अंत सो बहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन माहे आकाश गया सर्व लोक पूर्ण पद पार पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाई बैसंतर मान नानक का पातशाह दिस जाहरा पौन

0: चंदास जयत है।
1: शब रोज
0: गश्तम तरहवा कर देव बनी खया
1: गाहे नजर की कर करदम
0: बदबخت हम चो बखील गाफिल बदबخت हम

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगिस करते जोगा, लाख पोगिस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

के बंगाली फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार यार। रो के रुगेले मग देश के बंगेले भी, बंगशी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

दो दिया तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्ब धन तम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा पारिया तेरा अंत न

गर्व न कीजे नानका मत सिर आवे करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली है ये झूठा हकूमत का माण कर दे इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का माण करदा ये भी झूठा माया ये तो चलता पानी ये माण भी निरंकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछताए साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा से रोज लग पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी मेरे कोलों भुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही घुबा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पड़ता पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

0: जो गुरु का उपदेश सैबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश निर्देश बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुखे ने कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकर सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पार के तू मेरा गुरु जो गुरु नानक दा सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरम कीर्तन की समाप्ति अमृतवेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसे तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरकरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

कर्म बिना पद पाया था तेन एक समझाया इन्हें जनता की वहां सीखना ही वेखी जस पाया इकरा नू तू मेला का पद उठाया गुर कृपा ते जानिया जिस सदा बहाया जय देव साईं तुम्हारा सतनाम सी वाह।

लड़ाई रोड़ा से बैठ के सरगुरु ने पहली पौड़ी का दुख थी अपनी कमाई का बधाना पा के भेज भी है जिना गुजरा वाला इमराबाद और रोड जिना अपने गुरु ने विचाई की थी दास ने सके दर्शन की थी हम पाकिस्तान तो जिला आ गए तो कहरी सात संगत लेख रूपावे रोड सन पर जिना रोड़ा उसे सतगुर के पातशाह जी ने समाधि लगाई जो उन्होंने हाथ लाओ तो देखो वर्गी साई साहब जी जिसमें वेद आहार कर रोड़ा की तो करी मिठाई फिर पारी गई तपस्या क्योंकि सानू तपस्वी बनाना थी सानू संत सिपाही बनाना मेरा सिपाही भी संत भी बनाना इतने राजपाल उससे योग भी देना इस वास्ते मार्ग में पहला आप पारी गई तपस्या बड़े पार हर जो बनाई महान क्योंकि कर कर दे जाके पैगाम दे दुनिया नु वाहिगुरु नाल जोड़ बाबा जी प्रकट करते सर बाणी कह मत नहीं ये कमाई करके दुनिया नु गुरु ने पहला आप कमाई वड़े बाबा जी एक बार शिमले तो ऊपर कुफरी एक जगह है उसे पहुंचे पूर्णमासी का समागम आया जिस तरह अज भाटा वाली पूर्णमासी तो उस विशेष लहर ख्याल आया चलो बाबा जी के दरबार च हाजरियां भरिए कुफरी पहुंचे होर भी संगत दिल्ली तू देहरादून लाहौर चंग मुझियाणा होर किताब शिमले दिन संगत उसे पहुंची राती दीवान लगा महाराजा पटियाला सारी सेवा बाबा जी ने उन्होंने संभाली हुई बड़ी संगत हुई रात एक दो बजे समाप्ती हुई अमृत वेले पेश की संगत तो उस वेले हजूरी राजी सन भाई साहब भाई संतर जिस तरह अजकल बाबा जी ने हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर वो कितने बाहर नहीं वो तो उसे सन गुरु नानक के पातशाह जी ने हाजर नाजर जान के साहबान कीर्तन द्वारा हाजरियां भर के कीर्तन सुना के उन्होंने सिखी परसों चौथ आए बड़ी मेहर की उन्होंने बख्शा की थी कैरी खास संगत तो अजकल जिस तरह हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर उस वेले भाई संता सिंह जी राजी अमृत वेले कीर्तन होया पूर्व माशी तो दूसरे दिन हाउ किस कोल घुमाया गुरमुखरी ने गरीब उसको भी मर्यादा पूर्व माशी तो दूसरे दिन यही कीर्तन बड़े बाबिया को लैके इतना आनंद बनया कीर्तन का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए आप संगत की उठ के बाहर आके ते साध संगत से जुड़े जाए गुरमुखरी दे गरीब कीर्तन का भोग पाया हुक्म होया सेवकान तुसी शब्द की हाजरी पर कीर्तन आरंभ किया शब्द पढ़िया कोई आन मिला रहे मेरा प्रीतम से आया हाउ तिस तैयार बिचारी दर्शन हर देख के कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर काम से जे सुखदे ता तुझे एरा दी दुख भी तुझे ते आई जे भुखदे ता इस ही राजा दुख विच सुख बनाई तरमत काट काट सब अरबी अग्नि आग जलाई पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सुख संगत जुड़ी गई अमृत वे एक बाबा जी विराग लगाते जुड़े सन अकाल पुरख ये सवेरे सुख पढ़ी बाबा जी ने विराग का कह लगे भाई जी की पढ़े गरीब नवाज पखा फेरी पानी धोवा जो देवे बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरे भी है कि एवं पढ़ी जाए कदे संगतां वास्ते पानी धोए हथ जोड़ के किया नहीं गरीब नवाज असि तो पंक्तियां पढ़ गए बाबा जी कह लगे फिर जी अमल नहीं किया तो सानू किस तरह उपदेश कर सकते असि नहीं जुड़िया कीर्तन सुना कैरी खास संगत संत महाराज संत सुजान सिंह जी सारा जन उन्होंने पिता जी दास जोड़ी वाला सिंह
वाजे तो उठा दी। मन की बड़ी निराश का हुई, बाबा जी की प्रसन्नता लैन वास्ते आए थे। उल्टा लिया जी किसी गुरमुख ने कहा कि उदास ना हो, क्योंकि बाबिया जी ताड़ना ही ताड़ना, महापुरुषों को ताड़ते हैं जी, उन्होंने कुछ देना, मातुरुष बच्चे कुछ कहता है जी, इन्हों लैन बढ़ाना होता है, कुछ उपराला करो। सोचिया कि पक्षे का समर्थन भी, क्योंकि उससे बड़ी ठंड होती है। ख्याल आया भी पानी ले, पर पानी बड़ा नीवा, चश्मा बड़ी दूर, उतों स्नान करके मसा उपर चढ़िया जाए। कोशिश की प्यारी सिर तीन चुप ने सारा सारा सिर के कनस्तर चश्मे से पौधे पानी भर लिया, चढ़ाई चलनी शुरू कर दी। बड़ा सा चढ़िया, आखिरकार जिसे ऊपर आए तो बाबा जी भी नितनेम तो बाद बाहर निकले। चिट्टे दुध वर्गे बस्तर हो, चिट्टा दुध वर्गा दाड़ा, मस्तक से रबी दूर, नेत्रा च रबी मस्ती। बाबा जी कह रहे हैं दास जैसे सारा जत्था पानी लैके ऊपर पहुंचे, बाबा जी ने दूर ही वेख्या मुस्कुरा। बाबा जी मुस्कुराहट निकली बड़ी बड़ी, नेड़े आए कह लगे रख दो पी, जे तेरे पानी दे पीर रखे तो कह लगे कोई नहीं, थके होंगे नहीं गरीब नवाज, भावे थक गए पर फिर भी नहीं किया। बाबा जी प्रसन्नता आए, कह लगे कोई नहीं, भावे एक पीर लिया जे हूं पंक्ति पढ़ जोगे तो बन गए ना आपको गरीब ना। बाबा जी कह लगे बाणी कह मत, कह असर थोड़ा होंगे, कमाई करके कहो दसर पूर्व रसना का बोलिया कन्ना तक रह गया, मन से जाके कदे नहीं, मन का बोले आया मन से जाके बस। तो बाबा जी इतना वक्त कर कहते सर भाई कमाई करके दुनिया में इतनी महान काल बाबा जी ने तपस्या की, शरीर से निर्बल हो गया, लकड़ी दिया घोड़ियां बना के फड़ के बाबा जी सारी सारी रात खलोत करी, इतने ही बस रहे फिर केस बन रहे हैं, क्योंकि इस शरीर में दर्द हो गए किधरे सौ न जाए। तो इतनी महान धारणा कर दी, एवं तो दुनिया ने पूजी बाबा जी ने, क्योंकि बाबा जी ने धन गुरु नानक की पूजा की है, इस वास्ते जन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज। अज मेरे धन गुरु नानक ने महान तपस्या की, भारी करी तपस्या, बड़े भाग हरकों बनाई, भाई साहब भाई गुरुदास जी ने इधर बाबा पहला खचखंड नानक नाम करी सी, नाम का खजाना लिया प्यारे साधे वास्ते बाबे ने, ते नाम करी की निम्रता, निम्रता सब तो वही है। बाबा देखे ध्यान सर जनती सब पृथ्वी आई, बाजो गुरु गुबार है कभी सुनी लुकाई, बाबे पेट बनाया उदासी की रीत चलाई, फिर दरिया शोधन तरत नाम का खजाना, ये जरा दुष्टी रिड़ के सारा गुरमुख कट के सतगुरु सच्चे पातशाह दुनिया में उतरन वास्ते तुर पे, फिर किस तरह घर घर के जाके बख्शा दीदिया और पिछावा ने जवाने बेनती करा, तो आप पहली खास आप धन हो वे पाठों वाले हो गुरमुख मारी पाए कि प्यार रात चले गए अमृत वेले एक खास बख्शी दर्शन एक खास हंस दर्शन कल जो भी आरत की चादर ला के हंस उडारियां मार के आप सहबान सत्खंड में जुड़े हो देवते बने तुम सारे देवते। देवता कौन होंगे जिरा देवते वाले कम कर, राक्षस कौन होंगे जिरा राक्षस वाले कम कर, पर दास कितने भक्ति बढ़ाए गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस से देवते की ये तरफ न लगी। तो आओ यही हिसाब से धन गुरु नानक देव पातशाह सुने पवित्र पावन दिन में बख्शिश करो सर जी, इसे तरह आप चरणा जोड़ो।

स्नान करके चले आए हैं, एक दिन चले तुर जाए एकांत बह के अपने सारे से मूल मंत्र का जाप करे। बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र, जितना जप लो एदा बड़ा काम। तुरदियां फिरदिया उठदिया बहदिया हर नाम, वो नाम वाहिगुरु जी का ये जपांगे। सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा, साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक रहे। मेले अखीरला दिन आस्था जी की वार का मिलकर लगाइए, उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और हर